सुकाले जाय गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख वेरसमाय गुरीश्वर गुगौर वर्मा गुर कृपा की माय जय हो जान आका नाहे कह न कत न जाय गुरे कते बुझाए सवन जिया गए दाता सोमे विसन न जाय तीरथ नावा जत सपावा विम्बने के नाय करी चेति से तुपाई बेका विंक में मिल ले मत फिच खन जमर महान जय गुर की इक सुनी गुरे के दे बुझाए सवन जिया गए दाता सोमे विसन न जाय जय चुक चारे आर जा होर न सुनी होए नाव कंद विच्छानी है नाव सले सब कोय चंग नाव रखाए के जस किर जगले जे तिस नर न आवे न पर न पूछे के किता अंदर किता का दोषी दोष त्रे नानक नी गुंग गुंग करे गुणवंतिया गुंदे तेह कोय न सुजे जे तिस गुण कोय करे सुनिय सिर पेर सुनत सुनिय थर था लकस सुनिय तीपलो पाताल सुनिय तो न सके काल नानक भगता सदा विकास सुनिय दुपाप का नस सुनिय ईश्वर भरम इंद सुनिय मोट सलामंद सुनिय जो जुगा तनवित सुनिय शत सिमृतवित नानक भगता सदा विकास सुनिय दुपाप का नस सुनिय सत्संतो ज्ञान सुनिय असत का इश्नन सुनिय पर पावे मन सुनिय लगे सहेश ध्यान नानक भगता सदा विकास सुनिय दुपाप का नस सुनिय सरागना के गा सुनिय शिल्पी पतिशाओ सुनिय अंदर पावे राव सुनिय हाथों वे आसकाओ नानक भगता सदा विकास सुनिय दुपाप का नस मानने की गत कहे न जाए जय को कहे कछे पछताए रकर काम न लग नहार माने कव करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मंकोए माने सुर तो वे मंबुत माने सगब नरा की सुत माने मोचनता न खाए माने जम के सत न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मंकोए माने माग तक न पाए माने पत्सियों पर गज जाए मने मगन छले पंथ मने तरम सती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मंकोय मने पावे मोक द्वार मने पर बारे सदर मने तरे तरे गुरु सिख मने ननक हवे नविक ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मंकोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे तिरके मन पंचे सोए तारा जान पंचे का गुरे त्यान जे को कहे कहे विचार करते के करने ना समर दोल धर्म किया कपूत संतोक धर्म किया की सुध जे को बुझे होवे सचियार तले ऊपर के तवर तरती होर तरे होर तिस्ते वर करे कमजोर जी जहरम का के नाव सवन लिखिया बुरी कलम ए ओ लग लग जाने कोय लेका लिखिया केता होय कितते तन सियारियो रूप कितते तने गुंकुत किता पसाओ को कुवाओ तिस्ते होय लग तारियाओ कुरित कवन कहा विचार परिन जावा ए कुवार जो तु पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूछा असंख तपताओ असंख्यामोवेद पात असंख चोग मुराय उदास असंख पग ज्ञान विचार असंख सत्य असंख ततार असंख सुरमोवक्सार असंख मूल्य लाए तार कुरित कवन कहा विचार परिन जावा एक वार जो तु पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख मूर राम कोर असंख जोर हराम कोर असंख मर कर जाए चोर असंकल बहत्य कमाए असंख पापी पप कर जाए असंख कुरियर कुरे फिराए असंख मले

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद रहरा साहिब, हर जुग जुग भगत उपाया, पै जय रखता आया। राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकार निंद कपट दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई। बलहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाए लख्या रहाओ। जात मह जोत, जोत मह जाता, काल कला पर पुर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सुहानिया, जन कीती सो पर पया। कहो नानक करते किया बाता, जो कुछ करना सो कर रहिया। सोदा रागासा महला पहला, कुंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा केहा सो कर केहा, चित बह सर्व समाले। वाजे तेरे नाद अनेक संखा, केते तेरे वावण हारे। केते तेरे राग परिस्यो कहिया, केते तेरे गावण हारे। गावन तुधनो पवन पणि बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुधनो छितको पदख चाणन, लिख लिख तरम बिचारे। गावन तुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवती आदर नाले। गावन तुधनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुधनो सद विचारे। गावन तुधनो जति सती संतोखी, गावन तुधनो वीर करारे। गावन तुधनो पंडित पढ़न रखी, सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुधनो मोहनिया मन मोहन, सूरग मच प्याले। गावन तुधनो रतनु पाए, तेरे अठसठ तीरथ नाले। गावन तुधनो ज्योत महाबल सूरा, गावन तुधनो खाणी चारे। गावन तुधनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर का रखे तेरे तारे। से तुधनो गावन जो तुद पवन, रत तेरे भगत रसाले। और केते तुधनो गावन से मैं चनावन, नानक क्या विचारे। सोय सोय सदा सच साहेब, साचा साची नाई। हैप्पी होसी जाय न जासी, रचना जिंद्र छाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर देखे कीता अपना, ज्योतिष दी वडियाई। ज्योतिष पावे सोई कर सी, फिर हुक्म न करना जाई। सोपत साव सहापत साहेब, नानक रहन रजाई। हसा महला पहला, सुन बड़ा आखे सब कोए। केवड़ वड़ा डीटा होए, कीमत पाया न कहया जाए। कहने वाले तेरे राहे समाए। वडे मेरे साहेबागा, हिर कंपीरा गुणी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता, केवड़ चिरा रहाओ। सब सुरती मेले सुरत कमाई, सब कीमत मेले कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाए तेरे तिल वडे आई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा क्या वडे आईया। तुदविन सिद्धि के न पाईया, करम मिलै नहीं ठाक रहाया। आखन वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दहत सह क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। असा महला पहला, आखा जीव विसर मर जाओ। आखन औखा साचा नाओ, साचे नमकी लागे भूख। उत भूख है कह चले दुख, सुख्यो विसर मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए रहाओ। सच नमकी तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जी

दोखतेल हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता। किल बिक सकल देह को खरता, दुष्ट दोख ने कोच करता। श्री असद जावे पाए दयाल, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बंशत फल पावे सोई, दुख न तिस व्यापत कोई। अरल सुने गुंग जो यह सुरस न पावई, सुने मूढ़ चितलाय चतुरता आवई। सुने मूढ़ चितलाय चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह। हो जो या कि एक बार छोपई को कह, छोपई संबत सत्रह सहस पने जय। अर्ध सहस पुण तीन कहे जय, पद्रव सुधि अष्टमी रविवार। तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधार सवैया, पाए गहे जब ते तुम्हारे। तब ते को आंख तरे नहीं आनियो, राम रहीम पुराण कुरान। अनेक कहे मत एक न मानियो, सिमृत शास्त्र वेद सब है। बहु भेद कहे हम एक न जानियो, श्री अस पान कृपा तुम्हारी कर। मैं न कहियो सब तो है बखानियो। दोहरा

एक ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तो पाया सहज सहती मन वज आवा धाइया राग रतन परिवार भरिया शब्द गावन आइया शब्द

जाए जावे तू दया है। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाओ। नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुन ना गुरु नाओ। सतगुरु से तीरत्या दरगह पाए ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनो हिवत दे जाग।